0: May 2026. The closure of the Strait of Hormuz has caused havoc in parts of Pakistan that have been left in the dark. Chronic power cuts, coupled with rising electricity bills, has spilled into anger on the streets. Today's rally is organised by the Lahore Rickshaw Union. Liquefied natural gas from the Middle East that contributes a fifth of Pakistan's energy mix is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
1: Petrol mehanga kar diya gaya, load shedding shuru kar di gayi, bijli aati hai to gas chali jati hai, aur phir is awam pe ke jinki dukane रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं उन लोगों को टैक्सेस की यलगार कर दी गई है लोगों का जीना महाल हो चुका लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं कि लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकले महंगी बिजली महंगी गैस महंगा पेट्रोल
2: पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा वापस लें लोड शेडिंग खत्म करें ताकि عوام को सहूलियत मिले ताकि हम मिलकर दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें यह लाहौर में आज यह पहला मुजाहरा है तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी जिला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक हम عوام की आवाज और عوام के مطالبے जो ना पूरे जोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे यह सिलसिला जारी रहेगा
0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
3: इसके कमेंट्स वगैरह देखे ना
4: ठीक है
3: ये भी रिसीव इससे कह लो गिनती करके
4: ठीक है
3: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको
4: ठीक है लगवा दो
5: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूं
3: यार इसको सही तरह सेट कर लिए था आपकी
6: ਪਾਣੀ
3: ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਸੁਣਾਓ
6: ਜੀ ਸਰ
3: ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ
6: ਸਾਡੀ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ਟਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ਟਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਇਹ 3 ਘੰਟੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ 3 ਘੰਟੋਂ ਮੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ
0: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
5: देखें बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना चलें ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं हम पैटर्न बना लेते हैं अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए कटिंग के लिए लाइट चाहिए उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम। लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप एक वीक दो वीक ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है, 20% पेनल्टी पड़ती है, और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो सा है वो उस हिसाब से नहीं चलता। एक वर्कर है उसने यहाँ पर तीन मैक्सिमम 1,000 या 2,000 रुपये का काम करना, ठीक है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1,000 रुपये लेके जाएगा।
6: देखिए हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते, आप का इमेज का नुकसान हो, पार्टीज़ आपको दोबारा काम नहीं देती। देखिए पार्टीज़ को काम चाहिए, पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीज़ें होंगी ना।
0: Countrywide power shortfall has reached 4,500 megawatts, enough power to light up 4 million homes.
7: In the past 1 month, there have been about 2 weeks because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydel power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
0: Power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
8: Government ki price itni zyada high hai ki har banda चाहे वो उसके पास एक प्लेट की पैसे हो ना तो वो एक प्लेट ही बाई करने आ जाता है। लाहौर लाहौर के अंदर को तकरीबन 4 से 5 जोन है जहां सोलर बिकर है, जैसे आप हाल रोड ले लें, आप जौहर टाउन ले लें, आप DHA चले जाएं, आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए, हर तरफ अब सोलर बिकर है। हालांकि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बढ़े हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है, चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है, वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज़ आ रही है।
6: 18 2-4 दिन बाद ठीक हो गए यार, घर का साड़ा बल्ब सड़ जाता, पहला नहीं सड़ता हूँ सड़ा लग गया, क्यों करंट साफ नहीं गा, ऐसा करंट होता है फिल्टर, फिल्टर करंट होता है, लोग क्यों लगवाते हैं ऐसी वजह तो लगवाते हैं कि यार लाइफ ज़्यादा है।
8: जो सोलर है ना ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है, प्लेट्स इन्वर्टर लिथियम बैटरी 100% चाइना के इम्पोर्ट की जाती है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तलीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम, उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं। एज अ बिजनेस प्लान देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है, सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती, और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इनकम आई है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को।
0: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities, with green jobs expected to continue growing through 2030.
9: इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सीख सकते हैं।
10: solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country, and then the economy was in a really bad shape.

0: Pakistan's solar revolution is no longer confined to homes and villages. It is now transforming the country's industries. A 394-kilowatt solar system now powers the Khawaja Flour and General Mills factory in Hassan Abdal. In a country where high energy costs and frequent power cuts challenge businesses every day, this factory owner has become almost energy independent.
1: ये सोलर सिस्टम मेन जो वायर इसके पैनल लगे हुए हैं ना वो वहाँ से इसकी सारी वायर जहाँ आ रही हैं इस ये फिर आगे से जो है ना ये सिस्टम सारा ये इन्वर्टर लगे हुए हैं ठीक है जी ये इनमें सारी ये बिजली जो है इस इनमें जाती है फिर ये आगे इस वक्त बिल जो है ना वो चल रही है और सारी बिजली जो है तकरीबन इस वक्त 300 किलोवाट सोलर दे रहा है और बाकी जो है ना 100 किलोवाट जो हम वापस दे
0: The mill has significantly lower operational expenses than its competitors.
2: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी लेकिन बिल जो हमारा 20 25 30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी जीरो हो गया एक बचत इसमें काफी हुई है एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन जीरो हो गया और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी हो गई है तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है फिर सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिस के लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है
0: Decade, Pakistan has built a solar industry that is expanding rapidly. Today, more than 200 solar panel, inverter and battery manufacturers from all over Pakistan have descended in Lahore to launch new products.
3: उसकी सर सीएनएफ कराची रेट दे रहा है $23,000 कंबाइन हमारा कंपैक्ट यूनिट है ऑल वन में ही है
4: लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार
0: The solar boom was fueled by an influx of low-cost solar panels from China. It's helped save billions in expensive fossil fuel imports.
4: In Pakistan, usually people go for cost, which should not be the case in solar panel, inverter or batteries, because these equipments give you energy backup for a longer period. Quality should be the first and foremost priority. For any customer who is going for solar solution. We have installed around 51 gigawatt in Pakistan and the potential is 2800 gigawatt. If we install 100 gigawatt, right, 10 to 12 billion dollar saving. We are wasting so much money in electricity bills, agriculture and industry. So just imagine how can we save so much from energy and we can balance our trade deficit. The more cost effective it is, the more competitive we are. The saving the individual do, it can be invested in kids' education, health and food. It will reduce

0: carbon emission, bring Pakistan out of debt, and it will result in prosperous Pakistan.
1: Private rooftop solar production is now Pakistan's single largest source of electricity, accounting for more than 25% of total production in 2025, ahead of gas, coal, hydro and nuclear.
0: It was a perfect storm. There were so many variables which actually lead to this revolution. Everybody was interested to import solar equipment. The prices were collapsed in China, so that actually gave an opportunity to the investors. So all the investors jumped in to gain that profit. People had the buying power. In last 5 to 8 years, we imported around $22 billion solar equipment. So that's not by government, that's by us people. It's a people-driven revolution. So all these things combinedly resulted this revolution.
1: The Pakistan government is now increasing quality controls by establishing the Pakistan Korea Testing Laboratory, the first state-of-the-art facility for testing imported solar panels in Pakistan.
2: On average, 17,000 megawatt jo hai, wo import ho rahe hain solar panels each year. So when jab itni bulk quantity ke andar ek cheez aa rahi hai, to agar uski quality compromise ho jaye, to technology defame ho sakti hai aur uske consequences bahut zyada ho sakte hain. So humne uski quality ko ensure karne ke liye hamara plan ye hai ki humne isko jo hai wo mandatory list of items mein jinki humne quality control karni hai hamare regulator ne uske andar humne isko shamil karna hai aur phir jo ek unki scheme hai foreign manufacturing licensing scheme uske andar ye hota hai ki jo regulator hai uska inspector jata hai manufacturer ki facility ko visit karta hai wahan se random sample pick karta hai उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा हम उसके ऊपर कोई 3 मंथ्स लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स
1: ऑपरेटिंग अंडर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी एवरी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ सोलर पैनल्स अंडरगोस रिग्रस टेस्टिंग टुडे वन पैनल इज अंडरगोइंग अ वेट टेस्ट
2: स्टैंडर्ड हमें रिकमेंड करता है कि आप इस चीज़ को भी टेस्ट करें और इंश्योर करें कि जब बारिश हो रही है पैनल वेट है तो अंडर वेट कंडीशंस ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरनल इसका जो करंट है वो आउटर फ्रेम तक उसकी एक्सेस हो शॉर्ट हो जाए और जो इसको यूज़र है कोई इसको हाथ लगाता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का अंदेशा तो नहीं है कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है
1: पाकिस्तान्स एक्सट्रीम क्लाइमेट पुट सोलर टेक्नोलॉजी टू द टेस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट टू इंटेंस मॉनसूनस एंड विंडस्टॉर्म्स Rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
2: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है माउंटेड है और जालाबारी है हेल स्टॉर्म है तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज़ हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज़ के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया
1: इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड वाइडर अडॉप्शन आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री

0: Gas shortages have rocked major cities across India due to the Middle East crisis.
1: The LPG crisis has hit the restaurants really hard.
2: Gas mahangai ho rahi hai.
3: Bigar gas ki hamari factory nahi chalegi.
4: Nona na yenagutte anta id madidvi. Amele nodide gas ilve illa. Pankha hatra vadre pankal no shock naale barutte anta.
0: Can a biogas mart ease the country's energy crunch?
5: तो लगभग एक सिलेंडर यानी कि 20 केजी की जो वो बायोगैस प्रतिदिन बनती है।
6: अगर ये ज़्यादा प्लांट और बढ़ेंगे भारत जेड़ा अपने आप ऊर्जा च आत्मनिर्भर हो सकता है।
7: India is the hungriest market for energy, and you name the source of energy, and India wants it. India needs it.
0: May 2026. Bengaluru, the capital of India's southern Karnataka state, is severely impacted by global gas disruptions. Nearly 60% of India's LPG and LNG demand is met through imports. A majority of those consignments are routed through the Strait of Hormuz. Disruptions to energy supplies from the Gulf have contributed to a global energy crunch. In India, the impact is being felt across the economy. Many auto rickshaw drivers like Shiv Kumar face the daunting challenge of filling their gas tanks.
4: ಹೌದಾ ಹಿಂಗಪ್ಪ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಬಂಕಲ್ಲಿ ನೋ ಶಾಕು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು ನಾಳೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 350-400 ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸುಮಾರು 4:30 ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೋರು ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ₹500 ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸು
0: There's a cap imposed of only one refill per day in Bengaluru. And when pumps run out, drivers are turned away. Shiv now struggles to make ends meet.
4: ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಇದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಸೇಟು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 150-300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಜೀವನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ದುಡ್ದು ಅವತ್ತೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಡಿದ್ರೇ ಕಾಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ ಆಗೋಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಕೊಡಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ
0: ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ಂಟ್ ಫೇರಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆಟರ್ India ranks 12th globally in natural gas consumption, using roughly 2.2 trillion cubic feet. Its disruption is severely felt in Firozabad, a major hub of traditional small-scale manufacturing. The city produces 70% of India's total glass output, earning it the title of the Glass City of India. They use a mix of piped natural gas, PNG, and liquefied petroleum gas, LPG, to fire clay furnaces, both of which are in short supply.
3: करीब 100 साल से यहाँ परिवार बिजनेस का काम हो रहा है और इन चीजों को शुरुआत में जो शुरुआत हुई है ये इसकी फर्नेस जो होती हैं मेरे कॉलेज चलती थी परंतु कॉलेज चलने के बाद जब ये TTZ एरिया बनाया गया ताजमहल को सेव करने के लिए तो TTZ एरिया बनाया गया इस TTZ एरिया में ताजमहल के सराउंडिंग 70 किलोमीटर कोई भी यूज नहीं हो सकता ग्रीन गैस के अलावा तो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ को गैस का प्रोविजन किया, जिससे 2000 में ये गैस यहाँ पर आई। देखिए, जब तक ये बार खत्म नहीं होता तो जब तक गैस का सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि जितने ये अपने देश हैं जहाँ लड़ाई चल रही है वहीं से गैस आती है। कि क्या सब लोग देख रहे हैं, कुछ करते हैं, बगैर गैस के हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चलेगी। फरोबाद में करीब 2 से 8 फैक्ट्रियाँ हैं जो टोटल डिपेंड गैस के ऊपर है। लेकिन जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है, हिंदुस्तान में जो गैस आती है वो कतर से, ईरान इधर से आती है। इनके युद्ध शुरू होने से गैस का आना कम हुआ है, तो हम लोगों को जो आवंटन था DCQ पर डे का मिलता था हमको, उसका 20% उन्होंने कट लगा दिया है। इट मीन्स 20% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, 20% लेबर बेकार हो गई।
0: गैस शॉर्टेजेस हैव लेड टू आइडल फर्नेसेस अक्रॉस द इंडस्ट्री। Output has reduced by nearly 40%, leaving many workers without jobs.
3: Glass making factories, इसमें जो है एक व्यक्ति में 3 से डेली काम करते हैं पर डे, परंतु इसके जो प्रोडक्शन होता है, इसके डेकोरेशन होता है, उसमें कम से कम 4 गुने एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब एक व्यक्ति से लगभग 2000 एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इतने कम पैसे में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। ये सरोली खासियत यहाँ पर है। हमको उम्मीद है कि ये युद्ध बंद हो जाएगा तो गैस की आपूर्ति फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी, जिससे पूरा एम्प्लॉयमेंट हम दे सकेंगे। और ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो गैस पूरा मिल जाए, इंडस्ट्री चले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इसमें ही हमारी और देश की तरक्की।
0: इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। The energy squeeze extends everywhere. Across India, authorities have introduced anti-hoarding measures, including a 200-litre cap on diesel purchases at fuel pumps to prevent artificial shortages and price hikes. The crisis underscores India's dependence on fossil fuels, which still meets around 80% of its energy needs.
7: India is the hungriest market for energy, and you name the source of energy and India wants it. India needs it. We consume roughly 5.8 million barrels of oil every day. And bulk of that, roughly 5.2 million barrels, is imported. We also have 700 million Indians who are still living below energy poverty line. The backbone of India's energy security, energy prosperity, that is fossil fuel. India is urbanizing very, very fast. The growth of India, the story of India, is still driven by fossil fuel. What we have witnessed the last 7 to 10 years, the expansion of LPG in a very big way, probably the fastest growing LPG market in the world. And today we have roughly 340 million LPG connections across the country. As part of the government initiative, the government decided that every single household must have access to cooking gas. And so this scheme was heavily subsidized, heavily campaigned by the government. Bulk of this LPG before the Persian Gulf War was coming from countries like Qatar. In the overnight, the country was faced with a very difficult situation. The real challenge today is economic, basically because the prices have gone up. And our economy was not prepared for it. Consumers was not prepared for it. The consumers can feel the heat in terms of both price and also very often the supply.
0: Restaurants, factories and hotels that are facing gas shortages have left a trail of unemployment across the country. Estimates suggest that more than 10 million Indians may lose their jobs temporarily due to gas supply disruptions. Migrant workers in urban centres are left with little choice but to return to their villages. 30-year-old Dolly Davy is one of them. She and her husband have both lost their jobs. They embark on the long journey home to their village in Bihar.
2: Gas mahangai ho rahi hai. Mahanga de raha hum log nahi au paye bharane ka. 500 ka maga kaanch mein bharaungi 300 cylinder. Do din mein ek din mein kaam lagta hai. Roz kaam bhi nahi lagta hai. Yahi problem hai. 2 महीना का किराया हो गया, किराया नहीं दे पा रही हूँ, बाल बच्चे खिला रही हूँ, काम नहीं हो रहा ढंग से, यही बात है।
0: According to India's last census held in 2011, the country had 54 million interstate migrants. Thousands of migrant workers have temporarily left major industrial cities amid job losses and rising costs.
2: जब से महंगाई बढ़ा है ना एक दिन भी नहीं भर पाई गैस लक्कर पे बना खा रही किरायेदार से लड़ाई कर रहे हैं मकान मालिक लड़ाई कर रहा है चूल्हे पे नहीं बनाने दूंगी फिर हम लोग क्या करेंगे महंगाई बढ़ गई वहाँ पे काम है स्टेशन पे काम करके खा लेंगे गांव में चूल्हा पे बना सकते हैं अपना मकान है वहाँ तो नहीं कोई बोलेगा ना यहाँ तो किराया का मकान पे बोलता है आदमी
0: As the Indian government searches for alternative sources of natural gas, some Indians have found solutions closer to home by turning waste into biogas.
8: Well, India is one of the world's biggest sugar producers, but as the country enters its biggest seasons for sweets, prices are high, supplies are tight, and the government is stepping in. On your next Asia First, we look at what's behind this sugar squeeze.